0: on. बहुत इजी है. Try it.
1: सबके सामने?
0: Why not? Come on, boys. Hey. देखो बहुत आसान है. बहुत आसान है. देखो.